0: बर्थडे को जून 12
1: अनुगानी का तू एग
0: हाँ कदा तू एगे चिंपले पाउना नुसिकर यंग निमन बाउ बर्थडे
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.